0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जुन मनी इस कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुभकल कार्यक्रम में हम पर्यावरण से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और हम बार बार जिक्र करते रहे चले आ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अपना पर्यावरण बदल रहा है। आज भी अभी भी समय है कि हम इस पर्यावरण के प्रति अभी भी जागरूक हों और अपने साथियों से भी कहें कि आप भी जागरूक हों और साथ साथ में लोगों को भी बताएं कि अब हमें पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित और दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अपना बदल रहा है और इस पर्यावरण का बदलाव ये संकेत देता है कि पर्यावरण जो आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है, इसका कारण क्या है। कारण हम और आप सब जानते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, साथ में कार्बन जो निकलता है गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन जो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, साथ साथ में पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में हमें सोचने की बात है कि हमें इसको किस नजरिए से देखना होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम शुभकल में आज हम कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी से लाना ये हमें सोचना होगा, क्योंकि अब पृथ्वी दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इस ग्रह और उन सभी जीव प्राणियों जिन्हें इस आश्रय प्रदान करता है और खुशहाली के प्रति उत्पन्न चुनौतियों के बारे में वैश्विक एवं जन जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन एक सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है जिसकी आवश्यकता प्रकृति और धरती के साथ स्वभाव प्रोत्साहित करने के संबंध में 1992 की रियो घोषणा में जताई गई थी। इसका लक्ष्य मानवता के वर्तमान और भावी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जरूरतों के बीच संतुलन कायम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में पारित प्रस्ताव संख्या जो हम बताने जा रहे हैं 63/278 के जरिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय किया गया था और भारत विश्व में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली में से एक है जहां पर 37.70 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र यानी 2011 की जनगणना की उसकी अपेक्षा पर बता रहे हैं, जो कुल आबादी का 33%। अनुमान है कि 2030 तक भारतीय शहरी जनसंख्या के स्तर पर करीब 40% बढ़ोतरी होगी। इसकी आबादी 58% यानी 58 करोड़ हो जाएगी। इस दौरान 2015 से 2030 की अवधि में भारत की शहरी आबादी में 16 करोड़ लोगों की वृद्धि होने का अनुमान ऐसा लग रहा है और जताया जा रहा है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। विशाल आबादी के कारण भारत वर्तमान ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। 2019 में जब भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 3.7 गीगा टन और इसका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन 2.7 टन था, परंतु भारत का ऐतिहासिक संचय 1870 से 2017 उत्सर्जन बहुत कम है, जो कि अमेरिका में 25%, यूरोपियन संघ में 22% और चीन में 13% की तुलना में 3% है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार 2019 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी दुष्प्रभाव से सर्वाधिक पीड़ित देशों में भारत 7वें स्थान पर था। भारत ने देश के रूपांतरण में शहरों की भूमि की पहचान की है। सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 11, शहरों और मानव वस्तुओं को समावेशी, सुरक्षित, उन्नतशील और टिकाऊ बनाना और लक्ष्य संख्या 13 यानी जलवायु परिवर्तन और उनके दुष्प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना को क्रियान्वयन करने के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप भारत ने शहरीकरण की प्रक्रिया मजबूत बनाने के उपाय पहले से शुरू कर दिए हैं, ताकि शहरों को अधिक सक्षम एवं समावेशी एवं कार्बन में कमी के साथ टिकाऊ बनाया जा सके। भारत में जलवायु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के बारे में 2008 की राष्ट्रीय कार्य संख्या यानी NAPCC अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की ऐतिहासिक शुरुआत और राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित महत्वाकांक्षी एवं प्रतिबद्ध योगदान INDC कार्य योजना प्रस्तुत करना शामिल है इसमें। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये सभी उपाय स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की नीतियों और उनके कार्यक्रमों को इर्द गिर्द केंद्रित करती है। इनमें से समन्वित शहरी केंद्र, कचरे से संपदा को बढ़ाना देना, सुरक्षित एवं स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क की स्थापना करना, प्रदूषण में कमी और वन एवं वृक्षों का अक्षादान के माध्यम से कार्बन सिंक बढ़ाने की भारत के प्रयास शामिल हैं। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं मित्रों, आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताएंगे, छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हम बातचीत भी करते चले जाएंगे और हम गीत संगीत भी सुनते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण गीत को हम सुन लेते हैं, पर्यावरण सुना। बने रहिए आप के आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। साथियों, हम उन आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ में कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी लाना, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम और आप देख रहे हैं कि कारों से निकलने वाला धुआं, खास तौर पर जो हमारी मीलें लगी हुई हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। साथ साथ में आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शहरों का लगभग 70% योगदान रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे फैक्ट्रियों के चिमनियों के माध्यम से हो, जिसमें परिवहन, भवन निर्माण, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र शहरी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में बल्क योगदान के लिए जिम्मेदार हैं। आवश्यकता है कि इस बात की कि सभी संबंधित हितकारक शहरों और कस्बों में टिकाऊ एवं समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करें और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पर COP21 पेरिस समझौते जो हुआ था और सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रति हमें वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से लक्ष्य 11 जो है, जिसमें 2030 तक समावेशी, सुरक्षित, सम्पूर्ण और टिकाऊ शहरों के निर्माण की बात की गई है, जिसे हम SDG कहते हैं। जो SDG लक्ष्य 13 है, उसमें जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा भी व्यापक रूप से एक विस्तृत बहुस्तरीय एवं क्रॉस सेक्टरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें एक स्थानीय फोकस होता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई को तेज कर सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए साधन प्रदान कर सकता है। इसे देखते हुए वैश्विक महामारी के संदर्भ में विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस निम्नांकित के लिए सभी हितकारकों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। वैश्विक अभियान रेस टू जीरो और UN हैबिटेट और क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज पर विचार विमर्श और विचार मंथन करना नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को अमल करने योग्य शून्य कार्बन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, विश्व की 7.5 अरब जनसंख्या में से आधे अधिक यानी 55% लोग अब शहरों में रहते हैं, जिनकी ऊर्जा खपत में 78% और वैश्विक CO उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% से अधिक जिम्मेदार हैं। 2030 तक विश्व की लगभग 7% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में होगी और इस तीव्र शहरीकरण से विशेष रूप से ऊर्जा खपत, औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन से वांछित उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहेगा। यह आकलन हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा की तरह व्यापार का रवैया जारी रखता है तो धरती का तापमान 2050 में

सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जिसमें भयावत अनुपात के बाद प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मानव बस्तियां विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और शहरी गरीबों के लिए असुरक्षित बनाता है। इसमें चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और इसमें प्रभावित लोग भी होंगे। किफायती और उत्सर्जन में आक्रामक कमी आने की कार्यनीति के साथ कम कार्बन वाली संसाधन कुशल हरित व्यवस्था अधिक लाभ देने के वादा कर रही है। साथ साथ में शहरी पर्यावरण प्रदूषण और आपदा रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन आकलन और अनुकूलन ढांचा विकसित करने तथा समन एवं अनुकूल कारणों के वित्त शोषण उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य उपायों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे कि कम कार्बन फुटप्रिंट वाली भवन निर्माण सामग्री, रियायती क्षेत्रों और विकास केंद्रों की संतुलित आयोजनों जैसे कि उपायों के माध्यम से ऊर्जा सक्षम और जलवायु प्रकोप रोधी शहरों का निर्माण, ऊर्जा सक्षम भवन संहिता और प्रदूषण नियंत्रण अपव्यय प्रबंधन आदि के बारे में हम जन जागरूकता कर सकते हैं। जन भागीदारी के हितधारकों के बहु उद्देश्यीय सहयोग हम कर सकते हैं। और भी साथियों, इस कार्यक्रम शुभकाल में बातचीत होगी। हम यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं। पर्यावरण श्रोता बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4। अपना रेडियो अपनी बात है।

ओ भैया पेड़ ना कटाइयो, अभी आपने मस्ताना दिनेश मस्ताना और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत को सुना, लोकगीत का आनंद लिया। साथियों अभी भी समय है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अथक प्रयास करें, खासतौर पर उन शहरी क्षेत्रों जहां पर क्षेत्रवासी हमारे निवास करते हैं, शहरों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रदूषण वहीं से फैलता है, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला और चाहे वो चिमनियों से धुआं निकलने वाला, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब भारत सरकार क्या क्या आश्वासन है शहरी क्षेत्र के लिए, भारत सरकार के मंत्रालय किस तरीके से शहरी क्षेत्र के लिए काम कर रही है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। जो शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए फरवरी 2019 में जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन फ्रेमवर्क जारी किया था, जो शहरों के लिए जलवायु कार्रवाइयों की दशा में एक मार्गदर्शन ढांचा है और जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार बनाने और उनके प्रति जोखिम कम करने के लिए मदद करता है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जैसे हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट शहर मिशन, अमृत PMAY, शहरी परिवहन आदि शहरों को जलवायु स्मार्ट होने के उद्देश्य प्राप्त करने की सहायता करेंगे। देश में जारी विभिन्न मिशन विशेष

0: रूप से स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत न केवल शहरों को सुविधाजनक बनाने बल्कि शहरों में बुनियादी सेवाओं जैसे जलपूर्ति, परिवहन, बिजली, नलजल, उपचार, ठोस अपशिष्ट जो रहते हैं उनका प्रबंधन करना, बढ़ती मांगों के को अधिक संसाधन कुशल, कम कार्बन एवं आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से पूरा करने के लिए मदद करेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं जो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक और बड़े बात बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी आवास परियोजना में थर्मल कंफर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। इस तकनीकी से प्राकृतिक जो बातयान तापमान और आर्द्रता नियंत्रण में मदद मिलेगी, इमारतों की आवासीय गुणवत्ता में वृद्धि होगी और उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाना संभव होगा। इसलिए योजना एवं आवास कार्य नीतियों के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है जो समावेशी स्वास्थ्य एवं टिकाऊ आवास को बढ़ावा दे सके। परंतु इन हरित भवनों की लागत चूंकि सामान्य घरों की तुलना में थोड़ी अधिक है, इसलिए हमें सामूहिक आवास परियोजनाओं में थर्मल कंफर्ट को सक्षम करने के लिए उपयुक्त हरित वित्त शोषण तंत्र खोजने की आवश्यकता है। तो ये जो बातें हैं जो आपको हम कार्यक्रम सुपकल के माध्यम से बताने जा रहे थे। और भी बातें हैं जो चूंकि अब समय भी हो रहा है कार्यक्रम सुपकल से जाने का, अगले कार्यक्रम में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करत हेंगे और नमस्कार सब साथियों को
1: हमें भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया इतना घूलन तो दे करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते मतलब क्या तुम बात कर रहे अपने साथ
1: नहीं हमारे भी नमस्कार पहुँच जावे सभी श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ वो तुम्हारा है
1: नहीं हमारे युवा साथी ये सोचते हैंगे कि मनीष भज्जा या कार्यक्रम को लेके आते हैंगे
0: और मतलब है कि तुम हमें जो क्या वो चाह रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हमें अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई की बात को तुम्हें बुरा लगो जैसे तुम बीच में हमारी बात काटल लगे
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी हुई थेगी जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछे थे कि भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव करो है को काय से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथी ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्हीं सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी अब जैसे हम हुए कामयाब कार्यक्रम हम तो होंगे कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते हैं आप इतनो ज्ञान जब बोला थेंगे तो ऐसा लगत के तुम बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और वो लेट हुए अब तना बता तो दो कौन सा कार्यक्रम लेके आए हैं
1: जो कार्यक्रम का नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुना थे छोटो काम बड़ा मुनाफा
0: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ा कमाओ
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करने जा रहे हैंगे तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते हैं वो यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप हिचकिचा

0: विकास में बहुत ज्यादा समय लगा थे जी चीज इनको सीखने में। यदि आप किसी के पास बैठे हो, उनका सवाल का है, उसका जवाब कौन तरीके से देने है वो, तो नौकरियन में ये चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए, तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो, और तभी हम आगे बढ़ सके। तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
1: वाह वाह वाह वाह। लेकिन जो तो बताओ कि अभी अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे?
0: नहीं, हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे
1: हैं।
0: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी, दे का सलाह दे रहे हैं, इसमें सुना चाहेंगे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे। एक चीज हम एक बारे में बताना चाहते हैं।
1: फोन तो उठा लो पहला वो।
0: नहीं, हम बिल्कुल उठाए ले रहा फोन। हम अपने साथी इनको बताना चाहते हैं कि व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो, ये बहुत बड़ी चीज रहती है। जैसे अपन किसी बड़े व्यवसाय के बारे में या सफल व्यवसाय के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में जो सीख मिलत है, उनके जो अनुभव रहते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रही है।
1: अब फोन कटेगा, आप काय में से उठा रहे हैं?
0: चलो, हमारे संग टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैं। चलो उनसे बतका अपन कर लेते हैं तो उनके लिए कराते हैं।
1: तो बात
0: कुछ
1: नहीं करें, आप खुद आ।
0: चलो आप ही कर ले, रूपा जी का फोन है, आप ही बात।
1: हेलो, नमस्ते।
2: नमस्ते, रूपा रानीपुरा से, जिला टीकमगढ़ से। अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आए हैं। टीचर, अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है, इसमें कपड़ा भी आए हुए हैं तो कपड़ा की सिलाई चल रही है, सिलाई सीखेंगे अब।
1: अच्छा, यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं?
2: हाँ।
1: तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है, कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: हाँ, जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था, वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा। वहाँ से फिर हम गांव में आ गए, रानीपुरा गांव में, वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे, फिर तो पैसे भी मिलने लगे
1: जी,
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
1: जी। तो रूपा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है, यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, कैसे आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली, तो वो कहाँ से मिली?
2: हाँ, ऐसे गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से
1: जी,
2: उनसे हमने संपर्क किया। तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा, कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के, फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए, तो बस ऐसे आगे बढ़ रहे, हमें बहुत अच्छा लगा है
1: जी। तो आपने जब अप्लाई किया था, वहाँ पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
2: नहीं, फ्री में सीखा।
1: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं लगे थे?
2: नहीं।
1: अच्छा, तो रूपा जी, आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
2: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठे ही खाली घर में।
1: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
2: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें दो पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर न जाए हम मजदूरी करने, घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस दो पैसे मिले, हमें दो पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर न कहीं जाना पड़े।
1: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो आप काम कर रही हैं, इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
2: वैसे हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए, दिन में एक दो बिलो सिले तो बन जाते हैं 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
1: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ खर्चे होते, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
2: हाँ, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे।
1: अच्छा अच्छा, आगे बढ़ाएंगे जी।
2: हाँ, बिल्कुल, भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
1: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
2: हाँ, ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई

0: visto así, पुराने चीज थे ना, उन्हें सिलाए जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे, उनमें से कपड़ा सिलने के लिए सीखने के लिए काट के दिए थे उन्होंने
1: जी। कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
0: इसमें कोई लोग हमें देते हैं कपड़ा तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
1: अच्छा अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए?
0: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
1: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या लड़कियां?
0: 10-12 महिलाएं हैं, साथ में मिलके सारी करती हैं।
1: अच्छा, सारी लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
0: हाँ, समूह वाली भी है, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
1: जी, बहुत बढ़िया आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें
0: आगे? ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
1: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई है बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया तो क्या क्या परेशानी आपको आई, क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
0: परेशानी तो आती है वैसे भी
1: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
0: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके, सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं
1: जी,
0: उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है। इसके बाद में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
1: जी जी,
0: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते,
0: नहीं ले सकते ना। फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब। तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई, हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने की ये चीज क्या है
1: जी,
0: तो हमें जानकारी हुई।
1: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर इससे ज्यादा समय लगा?
0: अभी नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया
1: जी,
0: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए।
1: अच्छा, 3 महीने आपके गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं?
0: हाँ, वैसे सलवार है
1: जी,
0: है ब्लाउज है,
1: ये चीजें आप बना लेती हैं?
0: हाँ, ये 2-3 चीजें बना लेते हैं।
1: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
0: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी, अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प।
1: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गाँव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा के लोग आए और आपके पास कपड़ा सिलवाए, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
0: नहीं, अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है।
1: अच्छा,
0: तो अभी तो कोई नहीं आता, आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर हो गए टेलर, घर घर अपना काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी, इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हूँ उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
0: हाँ, पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से

0: मशीन भी रख ली थी तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था, तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिलते रहते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बरसती जी एक बात और बता कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे न बढ़ पे? अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता। ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे हो मैं
1: जी,
0: तो लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है? इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई और सब जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
1: जी बिल्कुल, आपकी कहने का मतलब है कि महिलाएं बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
0: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
1: जी तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
0: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ ताकि हम दो पैसे कमा सके। हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़ के?
1: जी जी बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गाँव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती है, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गाँव में रहकर ही कर सकती है, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
0: कर सकते हैं, लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारे साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं जो बहनें हैं और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें हम तक पहुंचाएं ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं,
0: कर सकते हैं, इसलिए सोच रहे हैं। लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ना जाए आगे, यही की यही रह जाए, सोच गलत है। आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।
0: जी
1: रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
1: जी
0: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
1: जी बिल्कुल रूपा जी,
0: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
1: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर के होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छी बात, धन्यवाद,
1: नमस्कार।
2: कहावत सा, तुम तो इतनी बुरी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें लिखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
1: हम
2: सोच ही रहते हम कमरे में आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके ऐसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ा थे, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उन्होंने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई है, और उन्होंने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रहे हैं। वाह धन्यवाद।
1: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का है?

0: बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और वे सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो केवी को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करवे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उसको जरूर सीखो। कहेंगे आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है और वो समय आपको बहुत कीमती हतो महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते ही हैंगे, वो सोचने के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से वे दो चीजों को ज्यादा पसंद करती हैं, दो या तीन चीजों को बहुत से वक्त, एक तो हो जाते है वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छो लगते है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजों पे या तीन चीजों पे काया अटकती। हम तो कहते आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बड़ी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बड़ी पापड़ है और या फिर जो मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हैं और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजों पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
1: अरे ज्ञान की देवी, अब हाँ। तनक रुक जाओ और हमारे साथी हैं, हम तनक सांस लें दो और जब लोग गीत सुनन दो हो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान देत चली जाओगी। तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैं,
0: ज्ञान
1: एक बढ़िया अपन भी थोड़ा विराम ले लेते हैं और अपन सुनवाते हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ सो गजल को अपन गजल को सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अगर हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे और अब हमें लगा थे वो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सकत हो गए कहेगा हम बोले सो फिर कहते ज्ञान दे रही
1: नहीं अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे साथ ही हमको बस पूछो चाह रहेंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहेंगे तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहेंगे कैसे जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकते हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकते हैंगे तो अपन ये चीजें आपको बताते जो बातें आपको बताते चाहे वो खेती किसानी जुड़ी बातचीत हो चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो तो ये सारी चीजें जो रखेंगी सारी बातें जो रखेंगी उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सएप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में और खासतौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय किला में बना है वो जैसे रूपा जी ने अनुभव दे हेंगे तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं यदि आप सफल व्यवसायी हेंगे आपको लग रहा है वो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर आपको लग रहा है वो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं
2: हमारा फोन नंबर है 92 19 20

0: 49
1: बिल्कुल यही पे कह रहे हैं। और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथी सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाएंगे ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो बुलाना हमारा नंबर जो है वो।
0: हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49।
2: हाँ, और साथी जरूर फोन लगाएं, या फिर फेसबुक पे फॉलो करें, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
1: अरे मनीष भाई सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में कहीं नहीं बताओ।
2: ऐप हमारे श्रोता साथियों के पास
1: जानत है?
2: नहीं नहीं जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से क्या वो चाहते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, वो जहाँ पर रेडियो नहीं पहुँच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहाँ पे इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहाँ भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर जाना है वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड को लोगो उपलब्ध पाओगे। बाखो डाउनलोड करो और चाँद इतने बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चाँद उन छिड़िया बैठ के सुन सकते हैं और अपनी ज्ञान की बात उनको सुन सकते हैं।
1: हाँ। तो केवल साथी ज्ञान की बातें सुनवे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनवे के लाने आप डाउनलोड जरूर करवे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथी इनकी हर बार जैसे शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लेवे रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जिते चाय बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा है कि अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में हम पंचायत पर बातचीत करते हैं, उन ग्रामों पर बातचीत करते हैं, ग्राम के विभिन्न ढांचा जो हम जिसे पंचायत कहा जाता है उन पर बातचीत करते हैं। ग्राम सभा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया था। आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि छोटे छोटे बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तक लोगों को दोस्तों पता नहीं है कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब शुरुआत इसकी हुई है, हमारा पंचायत में कितना योगदान है, ये अभी तक किसी ने नहीं समझा है। और लोग बस हवा हवा में बात करते रहते हैं कि हमारी पंचायत है, सरपंच हमारा काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, उस बातचीत को आप समझिएगा तब आप कहिएगा कि ये पंचायत राज व्यवस्था है, इसमें ये हमारा अधिकार है, ये नियम कानून है, इस बात को गौर करिएगा। अभी तक तो हवा हवा में बात होती है कि साहब मध्यान्ह भोजन नहीं बट रहा है, भाई साहब हमारे गांव में नाली की समस्या है, आप उस पर प्रकाश तो डालिएगा। आपको यही पता नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम में इसी बिंदु पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे मन में खटक रहा था कहीं ना कहीं कि अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अधिकार के बारे में पता नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, सिस्टम क्या होता है ये भी पता नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम तालुका और जिला आते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुखड़िया और मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता थे। भगत सिंह मेहता को

0: राजस्थान में व बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक भी माना जाता है। दोस्तों इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एक बड़ा बिंदु है, बड़ी समस्या है, लोगों को यही पता नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था। आइए हम हमारे एक्सपर्ट चंदन जी से आज हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कौन सा अधिनियम है, इसमें हमारा क्या अधिकार है। तो आइए हम पंचायती राज व्यवस्था पर चंदन जी से बातचीत करते हैं कि आखिरकार पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लेकिन विराम के बाद।
1: Thank you.

0: सबको ऐसा अभियान चलाना है।
1: सेवा भावी निस्वार्थ जुन, सेवा भावी निस्वार्थ जुन,

गए हो हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान

आरक्षण वो हमको अपनाना है। पंचायत से संसद तक, पंचायत से संसद तक बहनों को पहुंचाना है। आओ बहनों हम सबको।

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुमको साथ निभाना है।
1: मैं बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
0: मैं बन सकती हूँ सरपंच।

0: बन सकती हूँ सरपंच, तुम सबको साथ निभाना है।
1: घर से पंचायत तक, घर से पंचायत तक हम सबको मिलकर जाना है। आओ बहनों हम सबको ऐसा अभियान चलाना है। आओ बहनों हम सबको

0: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
1: पंचायत।
0: गांव में किते किते और काका मुझे जो तय को करे?
2: ग्राम सभा।
0: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
1: ग्राम सभा की।
0: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने
3: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: चंदनी, हमारे साथियों को बताइएगा कि चूंकि बातचीत हम कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, तो पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा।
5: तो हमारा जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम में लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं, खास करके जब 73वां संविधान संशोधन हुआ पंचायती राज में, तो उसके बाद ये लोगों को अधिकार दिए गए जो वो अपने गाँव की योजना पंचायत के साथ मिलकर खुद तैयार करें, अपनी आवश्यकताओं को खुद समझें, अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उसके समाधान की रणनीति तैयार करें। ये तो एक कानूनी पक्ष है जो हमें पंचायत के कानून के द्वारा प्रदान किए गए हैं पंचायतों को, ग्राम सभा के लोगों को। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा, जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की या विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हम तब करें, पहले ये समझ लें जो नियोजन क्या है, पहले नियोजन कहते किसको है। नियोजन आमतौर पर किसी भी काम को करने से पहले जब पूरी तरह उसके बारे में सोच विचार लिया जाता है, सलाह मशविरा करके जब जो निर्णय लिया जाता है और उस काम को करने की रणनीति या तरीके सोचे जाते हैं, उसे ही नियोजन कहते हैं।
4: क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातचीत बताई है, मन में एक हमारे सवाल चल रहा है कि ये नियोजन की प्रक्रिया है वो क्या है, इसको विस्तार से हमारे साथियों को बताइएगा।
5: नियोजन या योजना बनाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति, ये जो हमारा ग्राम सभा का समुदाय है या ग्राम सभा के जो लोग हैं या पंचायत के जो लोग हैं जिनको हमने चुना है, वो पहले खूब सोच विचार करे, काम करने के नए नए तरीकों पर विचार करे, उसकी अच्छाइयां बुराइयों को सोचे और तब जाकर समाधान करने के निर्णय पर पहुंचे जिससे उसका सही क्रियान्वयन हो सके। और अगर आप उसको समझें तो ऐसे कह सकते हैं, जब हम वार्ड ग्राम पंचायत के स्तर पर जब छोटी छोटी योजना बनाते हैं उसे ही सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है, सूक्ष्म मतलब छोटा और नियोजन मतलब योजना तैयार करना। जब हम छोटी योजनाओं को तैयार करते हैं छोटे छोटे स्तर पे, तो उसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहा जाता है। इसमें एक बहुत आवश्यक चीज ये है, जो हम योजना को तैयार करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास उपलब्ध संसाधन क्या है और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो गांव ग्राम सभा के लोग हैं, उनके साथ हम उनकी सहभागिता से चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद उस परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं योजना के निर्माण के लिए और क्रियान्वयन, मतलब उस योजना तैयार होना ही बड़ी बात नहीं है विकेंद्रीकृत नियोजन में या गांव पंचायत के स्तर पर जो छोटी योजनाएं तैयार करते हैं, इसमें हम जरूरी पक्ष ये हो जाता है जो योजना तैयार करने के बाद पे कैसे काम किया जाए, कि देखरेख कैसे की जाए, उसमें जिम्मेवारी कैसे तय की जाए, ये एक बड़ा जरूरी चीज है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है, यह सामूहिक तौर पे जो पंचायत के लोग हैं या ग्राम सभा के लोग हैं, इस तरीके का विश्लेषण से उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। वो बैठ के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, किस आधार पे कहां पहुंचना है, निर्णय तय करते हैं, तो एक तरह से ये उनकी क्षमता भी बढ़ाती है गांव के लोगों के साथ, जो वो अपने स्थानीय परिस्थिति स्थानीय स्थितियों को सोचने के लिए थोड़ा समझें चीजों को। जो हमारी एक मजबूत इकाई है, जो एक ताकतवर इकाई है गांव के संदर्भ में देखें या ग्रामीण संदर्भ में देखें, और पंचायत एक ऐसी इकाई है जिसको एक कानूनी अधिकार प्राप्त है।
6: बिल्कुल।
5: अगर आप देश के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास संसद है, राज्य के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास विधानसभा है, अगर आप गांव के स्तर पर देखते हैं तो हमारे पास पंचायतें हैं। इसे एक कानूनी अधिकार प्राप्त है जो ये एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस परिस्थिति में खास करके एक संस्था के संदर्भ में देखें तो पंचायत जो है वो विकास के लिए योजना बनाता है, लेकिन विकास की योजना ऐसी होती है जो आपकी सामाजिक न्याय एवं समानता पर आधारित हो, मतलब सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुए पंचायत को विकास की योजना बनानी पड़ती है। इसमें गांव के स्तर पे जो समस्याएं हैं, जैसे आप बोल रहे थे जो नाली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, लोग मानते हैं, लोगों का ये सोचना है जो समस्याएं हमारे पास जो है उसके समाधान करना जो है वो सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था कानून ये कहता है जो गांव के स्तर पर जो पंचायतें हैं या पंचायतें हैं वो स्थानीय सरकार के रूप में काम करती है, वो एक वहां की लोकल सरकार है, वो तो लोकल सरकार है। और इसके लिए पंचायतों को तीन चीजें दी गई हैं जो बराबर एक विषय बनता रहता है। अगर आप देखें तो हमारे पास पंचायत में काम करने वाले लोग हैं, उनके कानूनी रूप से उनके काम तय किए गए हैं जो पंचायतों क्या करने हैं, उन काम को करने के लिए उनको लोग दिए गए हैं, और लोग के साथ उनको पैसे भी दिए गए हैं जो काम करे। आमतौर पे किसी भी काम को करने के लिए तीन चीजें जरूरत है, आपके पास अधिकार होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए और आपके पास पैसे होने चाहिए। ये तो ये तीनों चीजें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जो पैसे की बात है अलग अलग योजनाओं से माध्यम से पंचायतों को दिए गए हैं। कुछ ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो पंचायतें अपना स्वतंत्र निर्णय ले गांव के लोगों के साथ बैठ के। तो इस थोड़ा सा मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय सरकार है, जो पंचायतें हैं, स्थानीय समस्याओं के निराकरण वहां के लोगों के साथ मिलकर वो करे। ये पंचायत, ये जो समस्याएं हो सकती है वो किसी विभाग के कर्मचारी से उसका मार्गदर्शन लिया जा सकता है और पंचायतें अलग अलग मुद्दे पे योजना बना के अलग अलग विभागों को भेज सकती है। उदाहरण के लिए आपने कहा था जो विद्यालय की समस्या है, तो विद्यालय की समस्या है तो इससे संबंधित योजना बना के शिक्षा विभाग को भेजा जा सकता है जिले के स्तर पे। पीने की पानी की समस्या है, इसको लेके हमारे जो योजना बना सकती है पंचायत, योजना बना के आपको पीएचईडी विभाग को भेज सकती है। आपके पास शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या को लेकर सरकार ने इतना बड़ा समग्र स्वच्छता अभियान चला रखा है, उसको लेके बात की जा सकती है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बहुत अच्छी हमारी जानकारी पंचायती राज व्यवस्था को और एक एक बिंदु पर प्रकाश डाला जो हमारे साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। और सोचने वाली बात यह है कि अब जाके अब पता चला कि पंचायती राज व्यवस्था में कहां पर समस्या है, कहां पर लोग अपना निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। चंदन जी आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातचीत हमारे श्रोता साथियों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गांव में काम करवावे की जिम्मेदारी कौन की?
1: पंचायत।
0: गांव में किते किते और का काम उज्जे जो तय को करे?
2: ग्राम सभा।
0: सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी कौन की?
1: ग्राम सभा की।
0: मैं हूँ जा गांव की सरपंच, रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारी को मैंने समझो है और आपने
3: रेडियो बुंदेलखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: एक बार फिर से पुनः दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार। अब तो दोस्तों समझ गए होंगे, अब एहसास हुआ होगा, अभी तक साथियों को ये पता नहीं, उन्होंने सोचा कि ग्राम सभा में प्रस्ताव डाला और बस काम हो गया है। ये साथियों अब हमें जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बस एक ही जिम्मेदारी समझते हैं कि बस हम वोट डाल दिया, हमने सरपंच गठन कर दिया, अब सरपंच ही सारा काम करेगा। नहीं दोस्तों, अब हमें जागरूक होना होगा तभी हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि समितियां इसलिए बनाई जाती हैं, निगरानी समिति हो, हर किसी कार्य योजना कब तैयार की जाती है, ग्राम सभा में जब कार्य योजना तैयार की जाती है, जैसे चंदन जी ने अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कार्य योजना तैयार करना एक बात नहीं है, उसकी जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य योजना अब तैयार हो गई है, हमने नाली का प्रस्ताव दे दिया है, अब बन जाएगी, अब उसमें ये देखना है हमारे पंचायत में कितना पैसा है, पंचायत में कैसे कौन क्रियान्वयन करेगा, कैसे रहेगा, कौन निगरानी इसकी करेगा, ये सारी चीजें, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं लेनी चाहिए तभी हमारे गांव का विकास होगा। एक आदर्श गांव आप दोस्तों किसे समझते हैं? एक आदर्श गांव वही गांव होता है जहां पर हम खुद सरपंच के साथ मिलकर जिम्मेदारी खुद निभाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर जिम्मेदारी हो। आप जब बैठक होती है तब आप बताइएगा कि ये काम हम देखेंगे, आप नाली का अगर बात की जाए नाली का काम लेकिन ये हम देखेंगे, जल का काम ये समिति गठित कर दी है ये काम देखेगा, तब काम में मजा आता है, पंचायत भी अच्छी तरीके से चलती है। अब अभी तक क्या होता है, सरपंच हमने बना दिया है, सरपंच ने प्रस्ताव डाल दिया है, वो भी गोपनीय तरीके से प्रस्ताव डाल देते हैं, जब भी ग्राम सभा होती ग्राम सभा प्रस्ताव डाल के बस तैयार हो जाता है। अब क्या मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सरपंच ने डलवा दी है। एक अच्छा नागरिक की यही पहचान दोस्तों होती है कि हमें उस

0: चीज के प्रति जिम्मेदार लेना चाहिए, उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें अपने आप को स्वयं इस चीज के लिए सरपंच को कहना चाहिए कि ये हम जिम्मेदार हैं और इसका हम क्रियान्वयन करेंगे। दोस्तों, हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले जाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पंचायत में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है, चाहे वो सदस्य के रूप में हो या फिर उप सरपंच के रूप में हो या सरपंच के खुद रूप में हो। अब क्या होता है कि सरपंच गठित कर देते हैं और हम बात करते हैं कि हमारे घर में शौचालय नहीं है साहब, हमारे घर में शौचालय बनवाइए। आप खुद जिम्मेदारी लीजिएगा कि जब ग्राम सभा होती है कितने शौचालय बन गए हमारे ग्राम में, अब कितने शेष हैं, नाली की क्या समस्या है, खंजड़ा की क्या समस्या है, ये सारी समस्या देखते हुए तभी हमें अपने कार्य को बढ़ाना होगा और साथ में ग्राम के विकास में अपना साथ एवं सहयोग देना होगा। साथियों, बस इतना ही हमारे इस कार्यक्रम हमारे गांव हमारी सरकार में। आपके हमारी फिर पंचायत पर बातचीत होगी अगले कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारा पता है, यदि चिट्ठी के माध्यम से आप बताना चाहते हैं तो पता लिख लीजिएगा। हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा, और हमारा फोन नंबर है
1: 92 19 20 77 49।
0: तो आपके रेडियो दोस्त मनीष लेते हैं इस कार्यक्रम हमारी गांव हमारी सरकार कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। वह समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जान बैठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भैया, आज भी जो प्रतिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो कवकजनक रोग है, उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रतिवर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगती है उनमें मधुरमिलासिका, चूर्णिलासिका तथा उपका, यह जिसे निलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मधुरमिलासिका की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में

0: जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मेडिकल वासिता का विशेष प्रभाव, वैसे तो कद्दू और ये फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
1: मैम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाए, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
0: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का अध्ययन कर लें और जो हमारे बीज है उनको चारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर भी जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
0: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग है ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताई है, मधुरोमलासिता, चूर्णलासिता, उत्तर या घानी रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मधुरोमलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहाँ शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मर जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहाँ जिस जगह शिरा पाई जाती है वहाँ पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूई होकर सिकुड़ जाती है और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती है। अगर संक्रमण उग्रित भी होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रासायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको वो नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोवेट 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में है, तो मेटानेक्सिल और मैनकोवेट इसका जो है

0: इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और इसका इसकी मात्रा जो होती है 2.5 ग्राम मेटानेक्सिन और मैंटोरेट को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी मैम, यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट है इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है और इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: जी साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हुए एक अच्छे से गीत के साथ, इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारे जो विषय विशेषज्ञ है मैडम उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहाँ तक खाने की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई, इस तरह की और करेला, इस तरह की सब्जियों को लगाएं, शेप
1: बिल्कुल मैम
0: करें।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम टमाटर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है, तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने

0: रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करें तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है। जी
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना चाहिए इस
0: जी
1: बात
0: शुरुआत से
1: को।
0: किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा
1: जी
0: तो उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि
1: जी
0: किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी
1: अच्छा
0: को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है,
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज
1: बिल्कुल
0: कर देता है। तो इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वेराइटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोग जमा के जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो
1: जी मैम
0: अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोग जनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोग जनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वेराइटी लगा रहे हो तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल भी लगाएंगे ना तो रोग जनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मतलब
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट
0: जी
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी वजह से जो विकल्प है उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढींचा लगवा दिया जाए खेत में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर कर रही है मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है।
1: जी
0: दूसरी चीज ये है वहाँ रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके
1: जी
0: अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो, जो उसकी
1: अच्छा
0: पैदावार को कम कर रहा है। और
1: जी
0: एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि
1: जी मैम
0: खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम
1: जी
0: कर देता है या लगाना छोड़ देता है। तो
1: जी मैम
0: ये सारे कारण हो सकते हैं
1: जी मैम
0: सबके।
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर हम बाल विवाह की इसमें बात करें तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है मैम?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं।

0: लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है।
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योर भी लड़कियां जल्दी हो जाती है,
1: जी मैम,
0: क्योंकि हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है,
1: जी मैम,
0: तो हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। दूसरे हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि तो जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं।
1: बिल्कुल मैम,
0: और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ, और इस कुप्रथा को भी फॉलो नहीं करना चाहिए।
1: जी मैम,
0: तो लोग जो है वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए
1: जी मैम,
0: तो पर्यावरण भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी इसका जो है एक विकल्प यही है कि शिक्षा।
1: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि शिक्षा एक ऐसा विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर
0: जी, जब आप शिक्षित होंगे तभी आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूध ले जाकर बस्सी से लगाए और जंगलों को ना काटें, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको भलीभांति जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहां ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005-07 की बात है कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005-07 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ।
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ ही आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहाँ मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम,
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है
1: जी।
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की है वो शादी करना है वो शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम पाँव जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं
1: जी मैम,
0: तो जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम पर लेना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे
1: जी मैम,
0: कोई भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था।
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा खूब मिलना ही चाह रहा था लेकिन हवा जो है बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा, इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए? इसको
0: रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाए, दो चार लोग एक ही वाहन से जाए, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण

0: जी मैम,
1: करें और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे
0: जी मैम,
1: हम विघटित करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
0: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
1: जी धन्यवाद,
0: जी
1: उन्होंने
0: थैंक यू मैम।
1: मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपनों का। जी धन्यवाद।
0: जी थैंक यू साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन्म के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन बढ़िया बढ़िया सी गारियन खो और इन गारियन को अपन आनंद ले हैं। जी हाँ दोस्तों, काय के जब ब्याह शादियन को मौसम आ जाता और ऐसे मौसम पे महिलाएं जब गारी गाती हैं तो देखो कितना सुहानो लगत मड़वा की तरह। और जब मड़वा की तरह गारी हो तो अपने गांव पूरा मोहल्ला के लोग बाग सुनत हैं और वो गारी विधा में जो चीज दर्शाई जाती

गाई जात बा कितनी सुहानी लगत। सो दोस्तों आज आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली खो। सो आओ दोस्तों देर ना करत भाई सुनत ही बढ़िया सी प्यारी सी गारी खो और लेते हैं इको आनंद।

देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो। ई गारी खूम गा रहे थे हर प्रसाद कुशवाहा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों आप एक क्रम में सुनते हैं अगले साथी की गारी इनको।

देखो दोस्तों, जब कितनी बढ़िया गाड़ी अपन सब जन ने सुनी है, ई गाड़ी को आनंद लो है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे प्रताप सिंह यादव जी और संगे गा रही थी रेखा शर्मा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गाई भी गारियन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल, बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। देखो दोस्तों कितनों प्यारी जापन ने गारी सुनी, ई गारी को आनंद लाओ है। ई गारी खूं गा रही थी उमा प्रजापति जी। अब दोस्तों ये गारी के संगे संगे आओ सुन लेते हैं अगले साथियों की और गाई भाई गारियन खो। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में, और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली।

बिल्कुल साथियों, हमने खबर ना पाई हो सजना कब के आए। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, इको आनंद लव है। ये गारी खो गारी हती सुशीला देवी जी। अब आओ दोस्तों एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन खो।

बिल्कुल, तुम बड़े प्रेम से आइयो समधी, हमें भूलना जइयो। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। ई गारी को गा रहे थे भैया गंगाराम कुशवाहा जी। अब दोस्तों गंगाराम भैया जी की गारी के बाद हम आप सब जन खुजो बता देवे कि आज के एक कार्यक्रम विधा बुंदेली से अपने दोस्त माता दिन भैया को जाबे को समय होगा है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी प्रभुया मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बिरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: ऐसा महल जो चाहो जितनी गाना
1: कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।
0: पानी पिलाओ जरा सा, बताओ लगा कर ध्यान।

हो गया था। हो हाथ में लो तो बीमारी फैले यने तन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप, हो हाथ में लो तो बीमारी फैले अनेक तन अनेक। वो तन मन की हानि हो भारी है।

सभी इंसान हासिल इंसान।

वैष्णव श्री कृष्ण भगवान मथुरा के लिए चले जाते हैं तो गोपियाँ किस प्रकार दुखी होती है? सुने आप।

0: नारियां देवी का रूप होती है, बात सकते हैं।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा में पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, हम पुजारी हैं। जब इतना अगरबत्ती खोल से देवी के लगन प्रसन्न हुई है देवी, और कहना

0: चांद पीत न मत चमक, ए चांद पीत न मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं, पत्थर में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम किया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो सोच लो के मिलने की बात है, वरना साथ फेरों में प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगे, बताए कैसे? यारे मोहब्बत मत करना यारे।

0: जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: बाबा संतली कहना है हमने इतना प्यार करो

एक बोरी की लनों में कलैया हमारे माने मत गई।

0: सपनों से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपनों की ही आवाज लगती है।
1: सपना? सपना कौन थी?
0: नहीं, अपनी।
2: अरे हमें तो

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। ई कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने की भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहला मोबाइल नंबर

पहले पहुंच जाती और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बात ही अलग है कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैंगी उनने कौनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी बस परिवार वाले देखिया या कुके जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे ब्योरे देखे आते ही तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रव हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हें की जुबानी सुन रहेंगे। तो आ चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहे।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में को है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम होते?
1: वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब देते हो। जगह जमीन नहीं आती, मजदूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: हमारे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपये दे देती महीना भर।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहते
1: हो।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो हमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटो जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाता रहा।
0: हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, बस यही खेल खेलते थे। और क्या?
0: अच्छा, कंची
1: चपट्टा खेल रहा है।
0: चपट्टा का
1: साउंड को मुझे चपेटा खेल।
0: अच्छा,
1: जी खेल रहा है।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ। खेलत में गीत है? गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते?
1: नहीं,
0: तो पहले तो गाती हूँ आप।
1: अब मैं भूल गया, तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल पूरे, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
1: बुढ़ापो का नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती
1: है? कोनो नहीं गाते हैं।
0: आप गाते नहीं? अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियां को अब जाने कहाँ कहाँ गई। को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते
0: कभी, मिल जाते इकट्ठे हो जाते,
1: कभी कभी इकट्ठे हो जाता। खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहने मिले तो अच्छा लगता।
0: अच्छा लगता
1: है।
0: अच्छा अम्मा, जो बताओ की आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे, मतलब पैर तक कहा थे, कपड़ा कौन कौन से चलते पहले?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी आती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिरा करने मिली तो बिस्कुट पहन लेते, बुक्सेट है ये पहन लेते हैं? और हम तुमने फिरा के दे दें तो भी पहन लेंगे और यही पहरा होता।
0: अच्छा जी, मतलब कोनो अलग से नहीं हाँ,
1: कोनो अलग से नहीं हाँ।
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में हुई?
1: हमारी अब हमें

0: तो ध्यान नहीं है बहन के, तेक बुमार में हमारी भैया थी
1: कोई, तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है। जब आप जाना था शादी के बारे में?
0: नहीं जानते, जब हमारी शादी हो गई थी
1: बिल्कुल नहीं जानती थी। अच्छा जी, से आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखा तो
0: हाँ।
1: पहले से देखा तो
0: हाँ। नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देते
1: हाँ,
0: पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा था।
1: अच्छा
0: बेटे से तो आते ही हमारे बाप माताई 8-9 साल के साथ हम 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे। 9 साल की शादी कर रही थी तो जिन जिन को काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने। बोली तो मैं 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चौपा। फिर उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया बोलने में दाए थे।
1: अच्छा
0: तो वही बताई नहीं होते कहीं में
1: 500 रुपया में ब्याह होगा
0: नहीं सबसे जैसे
1: अच्छा।
0: कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और दादा दे दे वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा।
1: अच्छा, अच्छा।
0: बड़े बड़े सेठ लोग
1: तो
0: ऐसे वहाँ ब्याह हो गया।
1: अच्छा जब आपकी ब्याह होगा इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधापुर में भाई है
0: ना हाँ, राधापुर
1: में ससुराल हैगी आपकी हाँ। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपकी भाई हैंगी, जैसे पहले दिन तेल मंडप
0: हाँ, पहले मंडप तेल भाव कर मंडप भाव फिर टीका भाव।
1: अच्छा 3 ही दिन को ब्याह हो
0: तो 3 दिन को हो
1: तो बरात 3 दिन मिली रही थी
0: नहीं 1 ही दिन 3 दिन मिली रही थी बरात
1: तेल वाला
0: दिन आ जाती नहीं आते टीका के देना।
1: अच्छा
0: और फिर भावर मावर बरती फिर वो देना थोड़ी जाती बरा दूसरे दिन जाती
1: तो जब जयमाला डरी तो आपकी
0: जयमाला नहीं डरी हमारी जयमाला नहीं डरी बहन हमें तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे हाँ अरे खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
1: अच्छा
0: और जो टोम जो होत लाल बाको ब्लाउज।
1: अच्छा
0: जो सब पहला तो मतलब नहीं लड़का मड़वा घाला ना तो चावल मार दे।
1: अच्छा चावल जी का घाले जाता आपको कछु बताओ
0: नहीं बता मैं नहीं बता।
1: अच्छा चावल को कछु बताइए
0: मड़वा के नाचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने
1: चावल के बाद
0: बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो फिर भावरे
1: काका चढ़ो तो आप
0: हमें पेजना चढ़ी थी 1 किलो के वो खमवज्जा
1: 1 किलो की पेजना
0: हाँ 1 किलो की पेजना वो खमवज्जा
1: बस
0: वो जो इतने पैरत थे पहने थे
1: बाजू बंद
0: हाँ बेचड़े थे।
1: अच्छा
0: हाथ में
1: तो अभी रखे हो आप
0: हाँ आप धरे बेन की बात है
1: अच्छा
0: छह लड़का होगा 6 लड़का के ब्याह कर ले।
1: अच्छा
0: कहाँ से आ रहे
1: बात है। अच्छा आपकी विदा काय में भाई थी
0: हमारी डोल में डोल जा डोली नहीं रहा
1: हाँ।
0: भाई में भाई थी विदा हमारी
1: उतने से इतने तक
0: जहाँ से नहीं उतने से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे
1: बैलगाड़ी में आए थे
0: हाँ,
1: अच्छा इसके पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी
0: हाँ ऐसे कब हम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ी गई से नहीं थी।
1: अच्छा बैलगाड़ी झांसी से कैसा लगा तो आपको विदा हो रही है आपकी और बैलगाड़ी से हो रही
0: है बैलगाड़ी से होती पहले विदा सवाई की होती हम अच्छी का।
1: अच्छा
0: पहले जे ते वाहन कहाँ थे ओरछा तक नहीं जाते खेलार तक नहीं जाते अब तो एक कदम नहीं रहा आदमी
1: अब तो अगर उधर भी जाना
0: अगर तुम्हें कारस देव न जाना तो गाड़ी से
1: जाना सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो इतने ससुराल में कुकु मिलो आपको
0: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
1: अच्छा आपके में नंबर की
0: है दूसरे नंबर के नानी ले दो
1: नंदन की शादी हुई
0: हाँ।
1: अच्छा शादी के बाद
0: बड़ी हती
1: बड़ी हती। अच्छा तो फिर आपके एते का करस में भाई मतलब कंकन छूटा
0: कंकन छूटो हाथे लगे थे 2-3-4 दिन रहते फिर चले गए थे।
1: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई
0: खिचड़ी बनाई थी
1: तो आपने खुद बनाई थी
0: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी।
1: अच्छा
0: और चमचा से तरवा दी थी
1: नाम होगा तो
0: हाँ
1: तो
0: ओरेंडर द्वारे में ओरेंडर हुआ दे।
1: अच्छा ओरेंडर हुआ दे तो जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई सबने खाई तो फिर का करने मिलो तो
0: हमें नहीं एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
1: वो देने
0: हाँ
1: ये उल्टा नहीं हो रहा
0: पहले देता ही है अभी भी देता मोरन के जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे नो रखवा बहु से सास लेते हुए पैसा।
1: अच्छा
0: चाहे 10 धरे चाहे 11 हो चाहे 100 रख दे लेकिन वो सास ले ओरेंडा तो ओरेंड पे रखत

0: बहू तो बेबी सास ले।
1: अच्छा एक और
0: जी की सास ना हो तो जेठानी ले,
1: तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास, तो आपके समय में खुलत
0: नहीं? हमारे समय में नहीं खुलत,
1: जूड़ा नहीं खुलत
0: नहीं।
1: अच्छा आपकी
0: जो छोड़ा खोलते, जो
1: छोड़ा खुलती
0: जो छोड़ा
1: तो ये भी पैसा
0: सास खोल सकती है,
1: खोल सकती
0: है, खोल सकती
1: है। तो कम हाथ हो तो मतलब
0: जब सासरे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास,
1: नहीं तो ये कछु महत्व
0: कछु महत्व हो जे।
1: अच्छा आपको नहीं पता
0: ना, छोटे आते से कछु दे
1: समझते नहीं आते होते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आई अपने ससुराल में, फिर कैसे काम कराती? जेठानी के संग मिलकर करती है लड़ाई होती?
0: जेठानी के संग करते लड़ाई का है कौन होती?
1: कहूं लड़ाई नहीं हुई आप?
0: नहीं हमारी नहीं हुई जेठानी
1: सास से,
0: न सास से भाई कहो ना
1: काय नहीं होती। आप सीधी हती के दो जने
0: दो एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने, फिर से आने होगा ऐसे सब अलग अलग होगा।
1: अच्छा और सासरी में का काम होती आपके? खेती
0: खेती होती, रात से खेती होती।
1: अच्छा
0: पहले मोटर कहाँ होती? रात ऐसे खेती होती तो रात चलाते रहते।
1: अच्छा और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती?
0: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
1: कितने बजे उठाती हैं?
0: 4 बजे उठ जाते
1: हैं,
0: 4 बजे से पी सकते, 5-6 किलो नाच पीस लेते।
1: 5 किलो रोज पीसने?
0: हाँ रोज, इतना जेठानी पी सकती इतना।
1: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती हो?
0: 4 बजे से भी पी सकती,
1: संगे पी सकती हूँ
0: ना, कभी संगे कभी अलग अलग पी सकती।
1: अच्छा फिर उसके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम?
0: फिर गोबर मोबर डालते।
1: कितने गाय भैंसे होती आपके?
0: बेला 10-12 गैया होती।
1: अच्छा
0: गोबर मोबर डालते, झाड़ा झूरी करते,
1: फिर
0: एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती।
0: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते, सो रात चलाते दिन भर।
1: अच्छा वो हाथ से बहाने आते?
0: नहीं बैलेंस से,
1: बैलेंस से चलते
0: घड़ियां नहीं आती लोहे की।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: सो वही चलाते रहते, कभी सास जेठानी चलाती कभी हम चलाते रहते,
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपकी?
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ। अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा
0: है? हमारा 6 लड़का।
1: 6 लड़का और लड़की?
0: लड़की नहीं है एक,
1: लड़की नहीं है एक। तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो
0: हुए? हाँ पढ़ाओ, मैं परेशानी हती से कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा
0: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल में। तो अब सबकी शादी हुए?
0: हाँ सबकी हुई, सब सब नाती ने दुल्हन की हो गई।
1: अच्छा नाती की भी हुई? कितनी नाती है ये?
0: 6 नाती है, 6 नातने हैं।
1: अच्छा तो बिला आपकी को मतलब बिला बड़ा परिवार है?
0: हाँ तो 6 लड़का है, तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा
0: और 1 के 4 है बड़े के, 3 मोड़ी है,
1: तो
0: एक मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए, तीन ना ना मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी एक के मोड़ा होगा, एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा है वो।
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको? अच्छा लगा था ये तीन भाई पे और सब जने आ जाते हैं तो और अच्छा लगा था ये ना। तो आप सुवाटा नहीं खेलती हो?
0: नहीं
1: कैसा खेल लगती
0: है? सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस फिर खेल
1: गाना
0: गाते
1: भूलने नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
0: 20 साल से ज्यादा हो गई है।
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसा लग गई थी मतलब?
0: पहले उनने इन्हें 4 जनन के कागज दे थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते।
1: अच्छा
0: सो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
1: हाँ।
0: हमें नहीं करने। सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत है, इन्हें 350 में लगते, हमें 200 रुपया।
1: धीरे धीरे
0: सो फिर हम इनके ससुर बोले ला जाओ हम दे दे वो करें, तो मैं 2-4 पहली नाच खावे के लाने बज्जा का करा। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच, हम पानी भरे आते इनको। सो फिर लगे रहे इनके, तो पानी तो अब छोड़ दो हमने बना तो नहीं अब।
1: अच्छा
0: तो जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब वही से पानी भरो इनको, बोला खावे पीबे की परेशानी से, कि अब जैसे नहीं आ तो जी दे तो सकते खावे, नहीं करते तो को दे रहे।
1: सही बात है,
0: तो कोई ना करे।
1: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500 हो जाते, 350 है हमारे, फिर 1500
1: भाई। अभी तो फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा, बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीख

0: ये आंगनबाड़ी कर ली फिर से जाकर
1: नहीं, आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
0: पहले तो महत्व देखो, आप सोच रहे आदमी के पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए।
0: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की क्या सोच रहे बताओ?
1: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही है, ड्रेस भी मिल रही
0: है। लेकिन मिल रहा पहले कहाँ मिल रहा?
1: हाँ पहले नहीं मिला, लेकिन अब मिल रही तो अभी के लाना पढ़ाई चाहिए है ना। बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
0: और का कहना
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है कि अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
0: अपनी को तो सब हमारी सब आठ आठ पढ़ी नातनी, नाती पढ़े
1: तो पढ़ाना चाहिए।
0: हाँ सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो को हुआ बड़ी बड़ी हो गई सब साथ साथ आठ आठ में करके छोड़ दो ब्याह कर दे नातन की।
1: बहुत बढ़िया
0: को कर दो, अब दो नाती पढ़ रहे की।
1: चलो बढ़िया माँ, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये लाने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

अपना रेडियो अपनी बात है। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो हैगो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो हैगो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो हैगो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उखो चौका आवासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेने पड़तो। तो देखो अब अपनो समय होते है आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गांव में या आपके आसपास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। तो

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनित रोग है उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता तथा उकटा या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिल आसिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है।

0: है। और मधुमेह विलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू और ये फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
1: मैम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाए, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
0: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
0: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकटा या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से, और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और अगेती बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या वांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह ये फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालेक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5

0: मैं मेटालेक्सिल और मैनपोजेट को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी मैम, ये मैम अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए।
0: जी,
1: और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: जी साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहाँ तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं।
1: बिल्कुल
0: इस क्षेत्र में
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है, तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो वहाँ पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने

0: प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है तो उसमें एक रोग लगता है वो है अगेती झुलसा रोग, और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना चाहिए।
0: जी, शुरुआत से किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट अल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है वही रोगजनक, और वही रोग आ रहा है तो, और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी, और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना यानी कि खाली पड़े रहते हैं तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत में तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी चीज ये है वहाँ रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहाँ जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था, मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम बाल विवाह की इसमें बात करें तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए देखा जाए, क्योंकि

0: जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर महिलाओं की और खासतौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है, तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहाँ तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। दूसरे हमारे, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं, और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ, और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो लोग जो हैं वो, अगर लोग शिक्षित हो जाएं और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएं, तो पर्यावरण भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी भूल जाएंगे। इसका जो है, इसका एक विकल्प यही है कि शिक्षा।
0: जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि शिक्षा एक ऐसा विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर मैम ये आती है,
1: जी जी जी, अब आप जब आप शिक्षित होंगे तभी आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें और हम ऐसे

0: से ज्यादा लगाएं, तो उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं, आप उसको वाली बात ही
0: जी
1: जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो
0: जी
1: लोग क्या करते हैं पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन
0: जी
1: करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो
0: जी
1: जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 7 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है। अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या शादी करना है
1: जी
0: वो शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम काम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे,
1: जी मैम
0: कोई भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था,
1: बिल्कुल मैम जी मैम
0: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई लेना नहीं चाह रहा था,
1: जी मैम
0: लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम इसका मैम बस
0: तो
1: लास्ट इसका सवाल रहेगा।

0: इसका समाधान में हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए? इसको
1: रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कारपूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
0: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते
1: जी। धन्यवाद,
0: थैंक यू।
1: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी, जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद,
0: थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज भी अपन सुने एक बढ़िया सी विधा को और विधा को आनंद ले हैं। वह विधा है नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, जब गाँव में क्या ब्याह शादी में नौटंकी आवे और नौटंकी की हवा ऐसी फैलत के हम का बताएं कि आज चलो फलाने की बारात में नौटंकी आ रही है। सो सब जने बिल्कुल नौटंकी देख के लाने बिल्कुल उताब ले रहे थे, बहुत ही तैयारी से कि आज चलो कानन के लाने स्वापी बांध लो, हाथ में मोजा पहन लो, मुंडा पहन लो, चलो अपन को नौटंकी देखना है आज। सो दोस्तों, नौटंकी जब अपन देखते हैं तो कितनी सुहानी लगत, कितना रात भर मन लगो रहा नौटंकी को देखने में। सो दोस्तों, आज एक क्रम में अपन सुने विधा नौटंकी को और नौटंकी को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, आओ दिन न करत भय सुनते प्यारी सी नौटंकी खो जी ये गा रहे हैं बनमाली वर्मा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे।

0: के घाती बने हैं। हमारे भाई साहब ने
1: हाँ।
0: तो सुनो भाभी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आप करेंगे।
0: अरे रहे जिंदगी

भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो

0: अच्छा चंपा सुनिए, मैं जा रहा हूँ और बाजार से एक शीशी ला कर देता हूँ और सारे भोजन में चाय मिला दो और हजल को खिला दूंगा।
1: नहीं महाराज नहीं।

0: मन के घाती बने हैं। हमारे भाई साहब ने
1: हाँ।
0: सुनो भाजी, अगर मुझे भगवान की यही कृपा है तो मैं भोजन अवश्य करूंगा।
1: नहीं लाला, ऐसा नहीं आपको।
0: अरे रहे हैं,

भाभी, आप कहती हो कि आप भोजन करोगे तो मैं तुम्हारे